0: 105.4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.
1: कोई शिकवा ना करेंगे ना आजमाएंगे तुम जहां पाँव रखोगे ये दिल बिछाएंगे हम तुम्हारी वफा की दुनिया में प्यार ही प्यार लुटाएंगे

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।